यहाँ पर पीन में जलन बुर्गु बुर्गु पड़न बड़न या पीन वनल बल खाओ बट नीड नीड यहाँ पल गल टैबलेट टैबलेट तो मंडा उलो गुजो कान गान में जरे यानी पुलगाड़ में यहाँ चंगा मंडा योंगो नीने टैबलेट टैबलेट नीने मन कांगो नलगोला मन पड़ल उलो नलगो मन ना बजे मोरा पुजु नीने कलड़ उड़े कवपट नीर लनिया पुजु नजर मन वाला टेबलेट मन नीने नलगो पुजु मन यान को क्लिनिक कड़े चला या मन ने चलो नीर वो मंगल चुलो मिजे टेबलेट पुजु मंगल न्याको या खाव बच्चे या मंगल न्याको चेरी जा लेरा पुजु मन मडल पड़ल मन गने वे बो मिजे कड़े 1-800-020-080 मिनी वो पीन वो मंगल चुलो चला जा मेरी गणुपुर टेबलेट वाले पीन वा मणिन वा याब वी उलू मंडुन मड़ मूरा मेमी चुला लंबल पुल वाले इन कौब नाटी।

मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं आई एम सॉरी माय गुड फ्रेंड लेट मी लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम माय गुरु देन आई विल टीच यू।